0: और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया।
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब और साहिबे कराबते दामादी बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है।

और अपनी लाठी डाल दो। जब उसे देखा तो इस तरह हिल रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। हुक्म हुआ कि मूसा डरो मत, हमारे पास पैगंबर डरा नहीं करते।

अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं।

0: नंबर 6 मजलूम की मदद की जाएगी। नंबर 7 जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे। नंबर 8 इस मुआहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और कुछ तो खून हराम होगा। नंबर 9 इस मुआहदे के फरीकों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फसाद का अंदेशा हो तो उसका फैसला अल्लाह अज़्ज़वजल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। नंबर 10 कुरैश और उसके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। नंबर 11 जो कोई यसरब पर धावा बोल दे उससे लड़ने के लिए सब बाहम तावुन करेंगे और हर फरीक अपने अपने इतराफ का दफा करेगा। नंबर 12 ये मुआहिदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ ना बनेगा। इस मुआहिदे के तय हो जाने से मदीना और उसके इतराफ एक वफाकी हकूमत बन गई जिसका दारुल हकूमत मदीना था और जिसके सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें कलमा नाफिजा और गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी और इस तरह मदीना वाकईतन इस्लाम का दारुल हकूमत बन गया। अमन व सलामती के दायरे को मजीद वसअत देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी तरह के मुआहदे किए जिनमें से बाज का जिक्र अगली नशस्तों में आएगा। हिजरत के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की फितना खेजियां और अब्दुल्लाह बिन उबई से नामा व प्याम। पिछली नशस्तों में बताया जा चुका है कि कफारे मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो उनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाइयां की थी जिनकी बिना पर वो मुस्तहिक हो चुके थे कि उनके अमवाल जब्त कर लिए जाएं और उन पर बजन बोल दिया जाए, मगर अब भी उनकी हमाकत का सिलसिला बंद ना हुआ और वो अपनी सितम रानियों से बाज ना आए, बल्कि ये देखकर उनका जोश गज़ब और भड़क उठा कि मुसलमान उनकी गिरफ्त से छूट निकले हैं और उन्हें मदीना में एक पुरअमन जगह मिल चुकी है। चुनाचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को जो अभी तक खुल्लम खुल्ला मुशरिक था उसकी इस हकीकत की बिना पर एक धमकी आमेज खत लिखा कि वो अंसार का सरदार है क्योंकि अंसार उसकी सरबराही पर मुत्तफिक हो चुके थे और अगर इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ना हुई होती तो उसको अपना बादशाह भी बना लिए होते। मुशरिकीन ने अपने इस खत में अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके मुशरिक रफका को मुखातिब करते हुए दो टोक लफ्जों में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग उससे लड़ाई कीजिए या उसे निकाल दीजिए या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर योरश करके आपके सारे मर्दाने जंगी को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुरमत पामाल कर डालेंगे। इस खत के पहुँचते ही अब्दुल्ला बिन उबई मक्के के इन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामील के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रंज और कीना लिए बैठा था क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बादशाहत छीनी है। चुनाचे जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बुत परस्त रुफका को मौसूल हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है, तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो कुरैश उससे ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए। उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया क्योंकि उसके साथी ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ उसके रवाबित दरपर्दा कायम रहे क्योंकि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान शरो फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने न देना चाहता था फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साठ रखा था ताकि इस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे, लेकिन वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रह कर शर व फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं। इंशाअल्लाह अगली आने वाली नशस्तों में मुसलमानों पर मस्जिद हराम के दरवाजे बंद किए जाने का ऐलान और मुहाजरीन को कुरैश की जानिब से दी जाने वाली धमकियों का तज़किरा करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।
1: کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामईन मेरा नाम डॉक्टर करार हैदर है हमेशा की तरह मैं प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है फैकल्टी आवर हमारा ताल्लुक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जिसके तहत 7 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और आपको मैं आगाह कर चुका हूँ आज जिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ मौजूद होना है उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी आर लकी टू हैव विद अस 3 फीमेल टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज प्रोग्राम सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्टिसिपेंट मैम अपने बारे में बताइएगा
6: जी अस्सलाम वालेकुम आई एम डॉक्टर अस्मा जफर वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूसीपी
7: अस्सलाम वालेकुम आई एम अमारा मसूद एंड आई एम वर्किंग इन यूसीपी फ्रॉम 2017 एंड आई हैव डन माय एमफिल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड माय पीएचडी विल बी कंप्लीटेड सून
8: अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज डॉक्टर सदफ अमीन एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
5: जी मोहतरम सामईन तारुफी कलिमात के बाद हम बढ़ते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहिबा आपसे है आपने डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन बताइए
6: थैंक यू सो मच सर आई एम डॉक्टर अस्मा जफर करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर आई हैव ज्वाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 2017 एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिस डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 अंडर द हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज देन दिस फैकल्टी इज कन्वर्टेड इन टू फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2022 इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स विच वी आर गोइंग टू रन अंडर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी currently 4 programs are running bs biotechnology ms biotechnology phd biotechnology and recently we have started another ms program which is ms forensic science
5: very nice and now I ask ms amara aapke department ke bare mein bataiye
7: जी थैंक यू डॉक्टर करार अच्छा हमारा डिपार्टमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत एडमिशन है और हमारे बीएस की क्लासेस तीन सेक्शंस हमारे 150 प्लस तकरीबन स्टूडेंट्स हो जाते हैं हमारे एमएस बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी की भी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं और अब हमने रिसेंटली एमएस फोरेंसिक शुरू किया है और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है एडमिशन के हाथ से एमएस फोरेंसिक साइंसेज का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी और एमएस बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा फोरेंसिक साइंसेज भी अब बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है
5: जी नवाजिश मिस हमारा अब मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा डॉक्टर साहब आप बताइए अपने डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन
8: बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम क्लोजली कनेक्ट हैं विद इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और यही रीज़न है कि इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे गेट प्लेसमेंट एट इंडस्ट्रीज
5: जी बहुत खूब डॉक्टर आसमा मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि आप अपनी साथ जो कॉलीग्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसरन बताइए हमें।
6: थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट द वर्किंग एनवायरनमेंट। सो आई वुड लाइक टू से दैट एट द यूसीपी आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, और जो सबसे अच्छी बात मुझे यूसीपी की अभी तक लगी है, जो जिसकी वजह से मैंने इतना लॉन्ग स्टे किया है, वो यही है कि यहाँ पे हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है वो यूसीपी में अपने कोलीग्स के साथ गुजरता है, घर से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं। तो हमारा बिल्कुल जो एक एनवायरनमेंट है वो फैकल्टी लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। तो इसमें कोई, और हमारा जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, हमारे जो वर्किंग सिटिंग प्लेसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसके अंदर कोई इस तरह का ड्रॉबैक नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतना लॉन्ग स्टे जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स यूसीपी के अंदर, उनका इतना ज़्यादा ये लॉन्ग स्टे होता है।
5: जी, ये सवाल मेरा मिस हमारा आपसे है, फैकल्टी से इंटरेक्शन के बारे में बताइएगा।
7: जी सर, अच्छा हम लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 9 PhD होल्डर्स हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा हमारे 2-3 फैकल्टी मेंबर्स पोस्ट डॉक पोजीशंस पे मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप और बहुत अच्छे दाद स्कॉलरशिप वगैरह पर अब्रॉड गए हुए हैं। कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं 1-2 जो अमेरिका में जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को टीच भी करते हैं और हमें रिसर्च में भी असिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लेक्चरर्स हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी उनकी रिसर्च प्रोफाइल है, और रिसर्च पब्लिकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में, कमर्शलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका बहुत अच्छा रोल है। तो फैकल्टी माशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है।
5: बहुत खूब मैम, अब मैं डॉक्टर सदफ से पूछूंगा, क्या उनकी भी यही राय है अपनी फैकल्टी के बारे में, उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है?
8: सर मेरी अपनी फैकल्टी के बारे में सेम राय है, और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ अ डाइवर्स फील्ड। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सम बिलोंग्स टू हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, सम बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जब हम इस डाइवर्स बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इससे स्टूडेंट को जो है वो बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, और उन्हें फर्दर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प आउट होती है कि वो हर टीचर से जब पढ़ते हैं जिनकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है उन्हीं एरिया में, तो ये स्टूडेंट को एक नई न्यू इंसाइट देती हैं।
5: बहुत अच्छा मैम, बड़े वाज़े तरीके से आपने बताया। मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अब वक्फा हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा यूसीपी की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, हम दोबारा प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं जिसका नाम है फैकल्टी आवर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं तीन हमारी खवातीन पढ़ाने वाली, डॉक्टर साहिबा और मिस अमारा और डॉक्टर सदफ। तो मैं डॉक्टर असमा से दोबारा सवाल करूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि बच्चों का एक्सपोजर के लिए क्या आप कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजिया और इस तरह की चीज़ें करवाते रहते हैं बच्चों को?
2: जी सर, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी आपने पहले सवाल किया है कि हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, तो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर ये भी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास वर्क, तो उसमें स्टार्ट ये चीज़ एक ज़रूर रखते हैं कि कोई ना कोई एक्सपोजर का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स का, वो ज़रूर हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कि कोर्स कौन सा है। अगर वो कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई सेमिनार जो है वो कंडक्ट करवाया जा सके, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जा सके, या कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्टडी टूर के लिए आउट ऑफ द कैंपस जो है वो लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी दे दी जाए और अगर उनको रियल वर्ल्ड के साथ उस थ्योरी को लिंक ना किया जाए, तो आई थिंक कि वो उस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ऑप्ट नहीं कर पाते। तो हमारी ये एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस है। मेरी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसको ऑप्ट करते हैं। और इसमें जो कॉन्टीन्यूसली जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आइदर इट इज़ अ स्टडी टूर, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मिस हमारा, जैसे कि डॉक्टर असमा ने बताया, इसका मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ आगाह करते हैं और उनको उनके बारे में बताते हैं। मज़ीद रोशनी डालिएगा।
3: अच्छा सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि यूसीपी का जो ये बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये ना सिर्फ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडिंग डिपार्टमेंट है, बल्कि रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से भी हमारा डिपार्टमेंट लीड पर है। और तो उसमें सर ये है कि हम रूटीन में अपने फैकल्टी मेम्बर से भी और गेस्ट स्पीकर से भी हम उनको कहते हैं कि आपने जो इतने अच्छे स्किल्स सीखे हैं वो प्लीज़ हमें सेमिनार्स दें, हमें बताएं। इसके अलावा सर, अभी हाल ही में हमने एक अलमनाय सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, दाद स्कॉलरशिप पे बाहर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनको खसूसी बुलाते हैं और अपने जो अब बीएस के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको गाइड करें ताकि ये कि ये भी बाहर जाकर मजीद कर सकें,
1: मोटिवेट भी।
3: बिल्कुल सर ऐसा ही है। इसके अलावा सर, हम इंटर्नशिप पे सारे बहुत अच्छी अच्छी सेक्टर्स में बच्चों को प्लेस करवाते हैं। हम सर अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, डीएनए डे सेलिब्रेट करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लेके बहुत अच्छा मॉडल कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन करवाते हैं जो कि हम पिछले 7 ईयर्स से रूटीन में बड़ा करवा रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर हम बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा सर, इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी हम प्लेसमेंट्स करवाते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बुलाते हैं कि फाइनल सेमेस्टर में आकर हमारे बच्चों को प्लेस करें, जैसे जॉब फेयर के लिए। जैसे सर, एक वो बड़ी मूवी में तारे ज़मीन पर वो मूवी है जिसमें उन्होंने ये किया है, तो हमने बिल्कुल उसी से मोटिवेशन ली और हमारे इस साल जो बच्चे हैं कोई 10 बच्चे तकरीबन उन्होंने इंडस्ट्रीज में प्लेस करवाए हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं फिर दोबारा आपका हवाला दूंगा, जाहिर है आपकी पीएचडी चाइना से है। हमें ये बताइएगा कि क्या आपने वहाँ जो लोगों से रवाबत कायम किए तालीमी और रिसर्च के बारे में, क्या आपने उसका समर जो है वो यूसीपी के बच्चों तक पहुंचाया?
4: जी सर, इसमें यह है कि क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र हैं, ये जो मेरे कुलीग्स हैं, उनमें से बहुत से कुलीग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जैसे एमआईटी के अंदर है, स्टैनफोर्ड में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की एक कॉन्फ्रेंस जो जूम मीटिंग है वो उनके साथ अरेंज करूँ और उन्हीं का कोई एक पेपर बच्चों को रीड करने के लिए देती हूँ और आई आस्क देम कि वो उनसे ही क्वेश्चन पूछें कि उन्होंने ये काम कैसे किया और उसमें उन्होंने किस तरह की हर्डल फेस की। तो ये है कि हम इस तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो अपना यूज़ करते हैं यूसीपी में।
1: माशाल्लाह, ये ही वजह है ना कि बायोटेक्नोलॉजी यू नो इज़ प्रोग्रेसिंग विद एवरी पासिंग डे। सो हैट्स ऑफ टू यू, योर पर्सनल एफर्ट्स, योर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, योर कंसर्टेड एफर्ट्स, आई विल पुट इट लाइक दैट। तो आपसे डॉक्टर असमा दोबारा एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि व्हाई बायोटेक्नोलॉजी ऑफ यूसीपी व्हेन देयर आर सो मेनी अदर class institutions existing in Lahore, why UCP and why biotechnology? Why?
2: जी सर, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूसीपी एज वेल एज एफओएसटी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं इसमें देखती हूँ कि हमारी जो रिसर्च हैं, रिसर्च लैब्स हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि यूसीपी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि इफ़ दे वांट टू परसू देयर स्टडीज़ फॉर एमएस एंड पीएचडी, तो उनको यूसीपी से ही करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे पास जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस वक्त जो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा एडवांस हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो हमारा यूसीपी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू अदर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स।
1: हमारा द सेम क्वेश्चन, व्हाई यूसीपी एंड व्हाई बायोटेक्नोलॉजी एट एफओएसटी, एनी सॉलिड और कोजेंट रीजन फॉर दैट?
3: अच्छा सर, इसमें वैसे मेरा मानना ये है कि वो अगर आप कभी ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ कहीं बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा बैठे हो ना, तो हम जैसे लोग कहीं छुप से जाते हैं। मुझे लगता है कि यूसीपी में रहते हुए मैं बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंस, यानी मैं बड़ा अच्छा एडिशन कुछ कर सकती हूँ स्टूडेंट्स की करेक्टर बिल्डिंग में और ये। और सर, मुझे यहाँ प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है। मुझे 8 साल यूसीपी में हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी का इन्फीरियर स्ट्रक्चर और हमारी बायोटेक की लैब्स बेहतरीन है। हमारे एचओडी साहब, हमारे प्रोरेक्टर साहब बहुत अच्छे से, हमारी डीन साहिबा हमें फैसिलिटेट करती हैं। और सर, स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए सर, हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ फंडिंग के हालात भी हमारे सामने हैं। इससे मैं अगर मुकाबला करूँ यूसीपी का, तो मुझे लगता है कि बनिस्बत हमारी लैब्स में हमारे बीएस के बच्चे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लैब काम कर रहे हैं और हम उनको रिसर्च पब्लिकेशन, हमारा बीएस का बच्चा रिसर्च पब्लिकेशन निकाल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक फैकल्टी लेवल पे भी और डिपार्टमेंट लेवल पे भी ये हमारी एक बड़ी प्रोग्रेस और बड़ी बात है कि हम ये कर रहे हैं।
1: जैसे कि दोनों मैम्स ने बताया, पहले डॉक्टर आसमा ने, फिर मिस हमारा ने, कि मुझे याद आ गया ताहिरा सईद का एक गाना कि हम सब हो तो सामने आए। तो वाकई बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ लगती है। मुझे यही बात मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा। डॉक्टर साहिबा, व्हाई यूसीपी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर डिपार्टमेंट?
4: सर, इसका आंसर मैं आपको टू पार्ट्स में दूंगी। एक तो लाइक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बायोटेक जो है वो एक इस तरह की फील्ड है जिसमें एट द एंड बच्चों के पास कुछ ना कोई बायोटेक प्रोडक्ट होता है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ क्लोजली कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसमें तखलीक का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो बायोटेक के बच्चों को उनकी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट से लेकर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक जो है वो उनको गाइड करता है प्रॉपरली, और उनको लाइक जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हम उनको देते हैं। दूसरा ये कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने यहाँ से ग्रेजुएट किया और उसके बाद लाइक हम आपको गाइड नहीं करते हैं। हाँ, इवन अगर स्टूडेंट्स को जो है वो फर्दर गाइडेंस चाहिए, वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो सर, ये कुछ अच्छी बातें हैं जो यूसीपी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं।
1: बिल्कुल, और जो तलबा और तालिबात को मजबूर करती हैं कि वो आएं और यहाँ दाखिला लें। चलिए जी, हम आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं मैम, डॉक्टर आसमा से दोबारा शुरू करते हैं कि ये बताइएगा कि आपके जो बच्चे यहाँ से फारगुल तहसील होके जाते हैं, आप उनको, तीनों मैम से पूछूंगा बारी बारी, आप उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था शुरू में यूसीपी में, मैंने सादी का एक शेर इस्तेमाल किया था फारसी का, कि शादी का खेर है जिसका तर्जमा उर्दू में ये है कि खुशबू वो है जो अपना पता खुद बताए, ना कि बेचने वाले अत्तार को बताना पड़े मेरे पास फलां खुशबू है। मैंने तो ये कहा था कि मैं अपने बच्चों को वो खुशबू यूसीपी की उनमें इनकलकेट करता हूँ। आपकी क्या राय है, आप ऐसी क्या चीज़ उनमें उजागर करती हैं ताकि जहाँ भी जाएँ वो यूसीपी का नाम रोशन करें?
2: जी सर, जैसे पहले भी मिस हमारा ने बताया है कि हम लोग क्लासरूम में तो एक जो कोर्स वर्क है वो तो करवाते ही हैं, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स की जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको एनहांस करें। और ये एक बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स का हमारे साथ इंटरेक्शन. अगर हम बीएस की बात करते हैं तो 4 साल का एक पीरियड होता है. तो आई थिंक अगर वो टीचर्स को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, अगर हम टीचर्स अपने आप को इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो मॉरल वैल्यूज हमें उनको मुंह से ना बतानी पड़े
1: रोल
2: मॉडल के तौर पे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे जाते हुए उनके अंदर वो चीज़ें मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि वो चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी होती हैं और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी उसको कंटिन्यू करते हैं.
1: जी मिस हमारा ये सवाल आपसे.
3: सर मेरा वैसे इसमें ये मानना है कि एक वालिदैन और एक दूसरा जो उस्ताद है, ये दो लोग हैं जो बच्चों को अपने से आगे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं.
1: रूहानी वालिदैन है,
3: रूहानी वालिदैन है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो सर मैं तो जो बच्चों को मैसेज भी देती हूँ वो ये है कि मेहनत करें सर, शॉर्टकट कोई भी नहीं है. हर चीज़ के लिए आपने मेहनत करनी ही है. जितनी मेहनत आप करेंगे वो चीज़, और हम बच्चों को इस चीज़ का आदि भी बनाते हैं कि आप प्लीज़ किसी शॉर्टकट और इन चीज़ों की तरफ मत देखें, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सिंपलिसिटी के साथ आप वो करें तो सर ज़िंदगी तो है ही बड़ी खूबसूरत, और इसी चीज़ को आगे ले कर चलें तो सारे रस्ते आपके हैं. सर अल्लाह ताला हर एक के लिए दर तो ज़रूर खोलते हैं, वो रहमान है सर.
1: डॉक्टर सदफ आखिर में यही सवाल आपसे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा.
4: सर मैं अपने स्टूडेंट को जो बात बताती हूँ ये कि दे हैव द पोटेंशियल, दे जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट. पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी अनसर्टेंटी होती है कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब मिलती है नहीं मिलती है, तो उसमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि दे हैव द पोटेंशियल, वो कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ उन्होंने जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है.
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब ने तो रूमी के कॉल को अपने अल्फाज में बयान कर दिया कि असल में ज़िंदगी जो है ना दुनिया वो आपके अंदर आबाद है, आपने अंदर नज़र दौड़ानी है, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, फिर अल्लाह ताला आपको पर फराहम कर देता है. इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है. मैं अपनी तीनों मेहमानान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि डॉक्टर असमा आपका, मिस हमारा आपका, डॉक्टर सदफ हमीद आपका, आप तशरीफ लाएं और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया. आइंदा भी हम इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे. ख्याल रखिएगा, यूसीपी की दुनिया से हम मुखातिब हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. जी हाँ, आज हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ विजन पे. जनाबे वाला, जैसे कि तारीख में एक नज़र हम डालें तो हमें एक पर्सनालिटी मिलती है अमेरिका में, जिसका नाम है जी अवेकन द गैंट विदन की किताब के आगाज़ में टोनी रॉबिसन. टोनी रॉबिसन एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तारीख का आगाज़ ऐसे होता है कि वो एक मजदूर थे. एक रोड पे एक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो रोड पे जनाबे वाला मजदूरी कर रहे थे. ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, तो वो अपने दोस्त को कहते हैं कि वो तुम हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ऐसा हेलीकॉप्टर मैं भी लूँगा. तो जनाबे वाला तारीख ने देखा कि बिल्कुल 10 साल के बाद एक शख्स अपनी वाइफ के साथ अपने पर्सनल हेली पे एक रोड के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहा था. उसकी वाइफ ने पूछा कि तुम क्यों इस रोड पे चक्कर लगा रहे हो, गोल गोल घुमाई जा रहे हो. तो उसने अपनी वाइफ को जवाब दिया कि ये वो रोड है जिस पे मैं मजदूरी कर रहा था. मैंने एक विजन देखा कि जो ऊपर है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मैं सेम ऐसा हेलीकॉप्टर लूँगा और मैं एक मज़दूर था. तो मेरे दोस्त ने मुझे झटका दे के कहा, पागल, ठेकेदार आ जाएगा, सही तरीके से मजदूरी कर, शाम को पैसे लेके जाने हैं. तो विजन की इम्पोर्टेंस अगर हम यहाँ से ही देखें कि उस इंसान ने जो 10 साल पहले सोचा और 10 साल के बाद उसको पाया, और सिर्फ ये नहीं पाया, आज तारीख इस बात की गवाह है कि जब वो अपने सेशंस के लिए निकलता है अपने हेली पे, कि उसने जाके स्टेडियम में रुकना होता है, स्टेडियम में खड़े होकर उसने सेशंस देने होते हैं, तो एक रश होता है, एक हजूम होता है, पूरी दुनिया से लोग इतना कॉन्सर्ट्स में नहीं जाते जितना उसकी 10 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच, छोटी सी मोटिवेशनल बात को सुनने जाते हैं. 50 मिलियन से ज़्यादा, अगर वो किताब लिखता है अवेकन द गैंट विदिन के नाम से, उसने किताब लिखी, 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हुई, 15 से ज़्यादा ज़बानों में उसको ट्रांसलेट किया गया. तो जनाबे वाला, ऐसे शख्सियात कहाँ से आती हैं? जनाबे वाला, ऐसी शख्सियात विजन ट्रैक को फॉलो करके आती हैं. अगर आप भी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कामयाबी को छू लें, कामयाब हो जाएं, बेशक वो रूहानी कामयाबी है, बेशक वो ज़िंदगी की पेशावराना कामयाबी है, तो उसके लिए विजन होना बहुत ज़रूरी है. विजन एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है. हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान, इसकी भी तारीख एक विजन की तारीख है, एक ख्वाब की तारीख है, जो अलामा इकबाल ने सोचा. दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और फिर उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ये मुल्क मार्ज वजूद में आया. तो विजन की इम्पोर्टेंस तो हमें यहाँ से ही पता चल जाती है कि मुल्क अगर बन रहा है तो उसके पीछे विजन है, सोच है, एक बुनियादी चीज़ है ना. कि आप अगर 1-2 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी सोच को बिल्ट करना है कि देखें मैंने 3-4 क्लास तक अपनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, या जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद आ रही हैं उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, आपने अपना ट्रैक खुद बनाना होता है. मुझे आज भी याद है जब पहली दफ़ा मैंने स्टेज को पिक किया, मैं प्रेप क्लास में था और एक छोटा सा प्ले था जिसमें दुल्हे का करेक्टर करना था, तो मैंने पहली दफ़ा तब स्टेज पकड़ा. 3-4 क्लास में मैंने अपने स्कूल में डिबेट्स करना स्टार्ट की. 6-7 क्लास में आया तो मैं नेशनल डिबेट्स तक पहुँचा. देन 7-8 में आया, मुझे हॉकी पसंद आई, मैंने हॉकी को सिलेक्ट किया. ठीक है, हॉकी मैं खेला, मैंने प्रोविंस लेवल तक, पंजाब तक मैंने हॉकी को खेला. हॉकी को खेलते खेलते देन मैं वापस डिबेट्स में आया, मैंने फेडरल बोर्ड की तरफ से नेशनल विन किया डिबेट्स में, उर्दू डिबेट कंपटीशन में. देन इट वाज द टाइम कि जब मुझे सिलेक्ट करना था कि अगर मेरे अंदर बोलने की स्किल्स हैं तो मुझे किस तरफ जाना है, सो मैंने अपना ट्रैक खुद चूज़ किया. ना मेरे ख़ानदान में कोई मीडिया से कोई ताल्लुक़ रखता था, ना मेरे आसपास पड़ोसियों में, नेबर्स में, सरगोधा के कल्चर में, या आपको आर्मी मिलती है, या आपको सरकारी इदारों की नौकरियां मिलती हैं, या कुछ बहुत कम लोग हैं कि जो कारोबार करते हैं. तो जनाबे वाला, उस माहौल में परवरिश पाते हुए अपना विजन यही रखा कि मैंने दुनिया को बताना है, दुनिया को बोल के बताना है, मेरे पास बोलने की स्किल है, इसको इस्तेमाल करना है. मीडिया पसंद आया, मीडिया को चूज़ किया, स्ट्रगल की, मेहनत की और आज कुछ ना कुछ मीडिया में काम कर रहा हूँ। सो विजन आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। आप बहुत सी ऐसी सियासी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपने विजन्स बिल्ट किए बचपन से ही और जनाबे वाला वो विजन कामयाबी से उन्होंने अपनी अपने लोगों तक, अपने हल्का अहबाब तक, अपने दोस्तों तक इस तरह स्प्रेड किए कि उनके विजन्स आज तक जिंदा हैं। मुआशरे में नज़र आता है कि मौलाना रूमी ने अगर कोई बात की थी तो वो आज तक चलती आ रही है, क्योंकि वो लोग मकासिद के साथ ज़िंदगी जिया करते थे। जिस इंसान के पास मकसद नहीं है वो इंसान यकीन माने 10 साल बाद भी ज़ीरो पे खड़ा होगा। हमारे मुल्क में एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब हम 9th-10th में पहुँचते हैं तो हमें ये ही नहीं सिखाया जाता कि हम मैट्रिक में बायो, फिज़िक्स, कंप्यूटर इन सब्जेक्ट्स को रखने जा रहे हैं, स्टैट्स को रखने जा रहे हैं, तो क्यों रखने जा रहे हैं? क्यों हमें यह बताया जाता है कि इन सब्जेक्ट्स को रखो, इनकी वजह से तुम्हें मैट्रिक में अच्छे नंबर मिलेंगे। यार बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर लेके बैठ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? वो बना ही किसी और चीज़ के लिए होगा। आपने उसको डाला साइंस में क्योंकि इसके मैट्रिक में नंबर अच्छे होंगे और इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी के लिए फिट इन हो रहा है? मेरे जैसा बंदा जिसका काम ही बोलना है, जिसका काम ही बात करना है, जिसका काम ही एक्ट करना है, जिसका काम ही डायरेक्ट करना है, उसको अगर आप उठा के एक ऐसे मैं मिसाल देता हूँ, किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर मुझे वो बिठा देंगे मैथ्स और क्लैरिकल काम में, क्या मैं कर पाऊँगा? मैं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक बोझ होगा पैसों का कि महीने के बाद मेरी तनख्वाह आनी है, लेकिन मैं कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकूंगा। हाँ, इस माइक के आगे बैठ के आप तमाम माँ बाप से मुख्तलिफ ओकेजंस पे, मुख्तलिफ इवेंट्स पे, मुख्तलिफ मौजूआत पे जब बात करने का मौका मिलेगा तो शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकूंगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को हमारी ज़रूरत किस जगह है। मैं पहले भी इस चीज़ की मिसाल देता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने जब इंसान को पैदा किया है, हर एक शख्स को पैदा किया है, तो उसके साइज़ का एक जूता, जैसे जूते की मिसाल होती है ना कि अगर मेरा पाँव 9 नंबर है तो मुझे 9 नंबर ही जूता आएगा, मैं कभी भी 7 नंबर 6 नंबर जूता नहीं पहन सकता। तो आपका करियर भी ऐसे ही है, आपका प्रोफेशन भी ऐसे ही है। अल्लाह की ज़ात ने आपके साथ आपका रिस्क ऐसे ही लिख के दिया है। आप किसी और रिस्क के तलाश में 6-7 नंबर जूते के अंदर फिट इन नहीं हो सकते। आपका करियर एक शूज़ के साइज़ की तरह है, अगर आप 9 नंबर पाँव को 9 नंबर शूज़ के अंदर रखेंगे तो तभी ज़िंदगी में फिट इन हो पाएंगे। हमने तारीख में देखा कि जनाबे वाला बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं कि जिनके जो ऑनर्स हैं, सीईओज़ हैं, उन्होंने स्टार्टअप्स ही अपनी 40-50 की एज में आके किए, क्योंकि उन्होंने अपने उस करियर जो फिट इन पोजिशन थी उसको वहाँ आके फाइंड आउट किया। सो कोई भी लेट नहीं, हमारे सामीन में बहुत से एज सेक्टर्स के लोग होंगे, अपने विजन की तलाश की जस्तजू करें। आज ही सोचें कि आपको अल्लाह की ज़ात ने किस काम के लिए भेजा है। शायद आपसे कोई बड़ा काम लेना हो, शायद आप जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ ही आपके लिए अल्लाह के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हो जिनकी आपने अब तक तलाश न की हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जिससे आपकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचे। तो प्रोफेशनल जो मकासद हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, अपना विजन सोचना बेहद ज़रूरी है। आज मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सोचना है कि 10 साल बाद मैं कहाँ पर होऊंगा अपनी पेशावराना ज़िंदगी में। अगर आज मैं किसी माँ का बेटा हूँ तो मुझे रूहानी तौर पर यह सोचना है कि मुझे अपनी माँ की खिदमत कैसे करनी है। अगर आज मैं एक मुअज़्ज़ब शहरी हूँ तो मुझे सोचना है कि मुझे अपने शहर, अपने टाउन, अपने घर की सफाई कैसे रखनी है। सो

पॉडकास्ट में था, उन्होंने बड़ा हैरान होकर पूछा कि इंसान मर जाए मतलब कैसे मर जाए। मैंने कहा जनाबे वाला, इंसान एक इंसिडेंट मतलब नॉर्मली एक टायर के पंचर होने से भी मर सकता है। उसने कहा ये कैसे मतलब पॉसिबल कैसे है कि इंसान जी टायर के पंचर होने से मर सकता है। मैंने कहा इमेजिन करें कि आपने ज़िंदगी में कोई मसला नहीं देखा आज तक, सब स्मूथली हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है जैसे आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, और एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सुकून से चल रहा होता है, आपको पता होता है जो मैंने सोचा होता है वैसा ही होता है, ज़िंदगी में आपने कोई मसला कोई मसाइल नहीं देखे होते, ये एक आइडियल सिचुएशन हम रख रहे हैं। तो अचानक ये होता है कि आपको टाइमली अपने दफ्तर अपनी यूनिवर्सिटी अपने स्कूल पहुंचना होता है और अचानक आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आपको कॉल आ रही होती है कि ज़रूरी है तुम्हारा आना, तुम क्यों नहीं आ रहे। आपने ज़िंदगी में अगर कोई प्रेशर सस्टेन नहीं किया, कोई प्रेशर फील नहीं किया, लिटरली आप इस टेंशन से मर जाएंगे कि अब इस टायर का क्या बनेगा और मैं स्कूल में कैसे पहुंचूंगा। तो ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, ये नेमत है, ये अल्लाह की ज़ात की नेमत है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं आप छोटे छोटे मसाइल देखते हैं, जब आप यंग एज में आते हैं आप छोटे छोटे मसाइल देखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा डिवेलप करते हैं, यकीन माने दुनिया की ऐसी कोई किताब आपको प्रैक्टिकली इतना मजबूत नहीं कर सकती, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई फ़लसफ़ा, दुनिया का कोई इंसान आपको ज़ाती तौर पे आपको इतना मजबूत नहीं कर सकता जितने आपको प्रैक्टिकल मसाइल मजबूत करते हैं, प्रैक्टिकल परेशानियां मजबूत करती हैं। मेरा यह मानना है कि प्रैक्टिकल मसाइल ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है जनाबे वाला। अगर आप ये जो स्टूडेंट लाइफ से ले कि आपकी यंग एज तक के मसाइल हैं, अगर यही ना आप देखें तो जनाबे वाला आफ्टर योर मैरिज, शादी के बाद के जो मसाइल होते हैं, जब आप आपके कंधों पर एक मर्द के कंधों पर ये जिम्मेदारियां आती हैं कि उसने अपने घर वालों को पालना है सबको पालना है, तो वो उस परेशानी को सस्टेन ना कर सके, तो खुदकुशी जो बहुत आम होती जा रही है आज की जनरेशन में, डिप्रेशन बहुत आम होता जा रहा है, एनजाइटी बहुत आम होता जा रहा है, उसकी वजह ही ये है कि अपने आप को हमने कमरों तक महदूद कर दिया। हमारा ताल्लुक मोबाइल से उसका आगाज़ होता है, उस ताल्लुक का और मोबाइल पर ही इख्तिताम होता है। हमारा ताल्लुक रील्स के साथ है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के साथ है, हमारा ताल्लुक लोगों के साथ नहीं रहा। इस ताल्लुक को बिल्ड करना ज़रूरी है ताकि ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड आके देखें कि दुनिया में चल क्या रहा है, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी को किस तरह और कैसे लेके चलना है। आखिरी सेगमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत मज़े के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद मोहसिन ज़ुल्फ़िकार साहब से, जो कि हेड हैं लाहौर चैप्टर के CDRS पाकिस्तान के लिए। सर, हम बात कर रहे थे बेंजी प्रोजेक्ट के हवाले से, जो स्ट्रे डॉग्स के हवाले से और स्ट्रे एनिमल्स के हवाले से एक प्रोजेक्ट है आप लोगों का। बड़ा अच्छा आइडिया लगा जी। अगर हम अब्रॉड जाएँ तो वहाँ पर डॉग कैचर्स और इस तरह के सेटअप्स मिलते हैं कि जिसमें स्ट्रे एनिमल्स को पकड़ के ले जाते हैं। मतलब अगर आपका पेट है तो इट्स मैंडेटरी कि उसको आप कॉलर लगा के रखें,
2: बिल्कुल,
1: ताकि पहचान हो सके कि ये पेट है या स्ट्रे है। तो ऐसे एनिमल्स जो बगैर कॉलर के होते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं और बड़े अच्छे उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना और वैक्सीनेशन देते हैं और बाकी उनको फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती हैं और मौसम की सख्ती से भी बचते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आपने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम शेयर किया, क्योंकि आपका यहाँ लाहौर में सोसाइटीज़ के साथ कोई कोलैबोरेशन हो रही है इस हवाले से कि जो जैसे बहरिया टाउन है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स के काफ़ी इशूज़ हैं इस तरह के।
2: इसमें मैं बताता हूँ, जो लाहौर में, क्योंकि ये हमारा जो रावलपिंडी, कराची और गिलगित के बाद लाहौर में पहला इनिशिएटिव है और ये जो हमारा शेल्टर है बेदिया रोड पे ऑपरेशनल हो गया है। सोसाइटीज़ की जहाँ तक बात है, अभी फर्स्ट स्टेप में हमने तो शेल्टर कंप्लीट किया है और उसको ऑपरेशनल किया है नियरेस्ट एरियाज़ के लिए। और आपको पता है ये हम अपना सेल्फ हेल्प बेसिस पे कर रहे होते हैं और इसमें अगरचे हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ की तरफ से अब रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हैं कि डॉग्स के इश्यूज़ हैं हर सोसाइटीज़ में। आप लाहौर की सड़कों पे भी देखें, बड़े ओपनली स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो इसमें ये है कि जो हमारी टीम है जो स्पेसिफिकली एनिमल वेलफेयर पर काम कर रही है, जिसको हेड करते हैं लाहौर में मिस सारा और साथ डॉक्टर अवैस हैं, उन्होंने जो एक हमारा ज्वाइंट वेंचर है सोसाइटीज़ के साथ, उसमें हमने एक नॉमिनल सी कॉस्ट है जिसमें आप ये कर लें कि एक टीम ने आना है, डॉक्टर्स की टीम ने या व्हीकल ने आना है, उसने आके डॉग्स को कैच भी करना है, स्ट्रे डॉग्स को या कैट्स को, जो भी इश्यूज़ हैं उस सोसाइटी के, उसके बाद उन्होंने अपने शेल्टर में लेके जाना है, वहाँ पर उसका जो लीगल हेल्थ प्रोसेस है, जो न्यूटर का, वैक्सीनेशन का, वो चीज़ें करना, और फिर उसका जो आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की कि उसको फूड प्रोवाइड करना और जो मौसम की सख्ती है या नरमी है उस हिसाब से उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो वे कुछ कॉस्ट है वो जो हमारा टीम है एनिमल शेल्टर की वो बता देती हैं, तो फिर सोसाइटीज़ के साथ MOU करके तो हम उस सोसाइटीज़ में काम करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ कि हम युवास के साथ लाहौर में हमारी टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, उसके बाद जो दूसरे इदारे हैं जो सिंगल इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, युवास को भी कर रहे हैं, और अभी हमने हमारी टीम ने जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसके साथ भी एक MOU साइन किया है, उनकी टीम्स और हमारी टीम मुश्तरका कंटोनमेंट के एरिया में एनिमल वेलफेयर के लिए काम करेंगी।
1: माशाल्लाह जी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, मैं आपका जो कुछ ब्रोशर्स वगैरह देख रहा था तो उसमें आपका जो प्रोसेस है ये स्ट्रे एनिमल्स के हवाले से, उसमें 5 स्टेप्स हैं, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज एंड देन एजुकेट।
2: जी,
1: तो मीन्स कि आप ऐसा भी होता है कि आप उनको रिलीज कर देते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन और सारा प्रोसेस करने के बाद, या आप उनको उसके बाद रखते हैं शेल्टर होम में? क्योंकि रिलीज कर दिया तो फिर सोसाइटी में तो फिर वैसे ही घूम रहे हैं, फिर वो लोग उनको मारेंगे, जहर देंगे, गोली मारेंगे।
2: उसमें बताता हूं, जो आपने अभी बात की ना कॉलर की, हम जब इन्हें रिलीज करते हैं तो इनके नेक पे कॉलर टाइप लगा देते हैं और उसी एरिया में जहाँ से ये ट्रैप किए होते हैं उसी एरिया में रिलीज कर देते हैं। और जब ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट हो जाता है तो इससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है कि ये आपको बाइट करेगा या कुछ ऐसा, ये इवन के आपके पास भी रहे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल होगी, और जो एक इस मसले से जो लोग जान छुड़ाने के लिए जहर दे देते थे या गोली मार देते थे वो है। और इसमें अब मैं आपके प्रोग्राम की विरासत से सुनने वाले जो सामीन हैं उनको बताता जाऊं कि पंजाब में एनिमल वेलफेयर जो एक्ट है वो नाफिजुल अमल हो गया है, उसमें पुलिस बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, पुलिस ने अपना जो पार्क के नाम से पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी बना लिया है और पूरे पंजाब के जितने शहर हैं सब में, और उसमें एनिमल को अगर आप भी कोई देखते हैं कि कोई एनिमल के साथ अब्यूज़ कर रहा है या कोई मार रहा है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उस बकायदा उस पर FIR और जो उसके कानून के तहत जो जो सजाएं हैं वो नाफिजुल अमल होंगे।
1: दैट्स क्रेजी। और आपने इसमें बल्कि जो लास्ट एजुकेट का जो एक स्टेप डाला हुआ है वो भी बड़ा अच्छा है, मतलब रिलीज करने के बाद कम्युनिटी को एजुकेट भी कर रहे हैं उनके हवाले से।
2: बिल्कुल जी,
1: कि ये सेफ है आपके हवाले से।
2: जी, बिल्कुल, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और जनरल कम्युनिटी में हम एजुकेशन प्रोग्राम भी जारी
1: हैं। जी, हम बात करेंगे आपके दो मजीद प्रोजेक्ट्स पे, एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हुआ है, तो हाजिर होते हैं शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: अब्बा, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: FM 92.6 Life Station of the Nation.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामईन, मेरा नाम डॉक्टर करार हैदर है। हमेशा की तरह मैं प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है फैकल्टी आवर। हमारा ताल्लुक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जिसके तहत 7 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और आपको मैं आगाह कर चुका हूँ। आज जिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ मौजूद होना है उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर लकी टू हैव विद अस 3 फीमेल टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट who will be participating in today's program. So let's move towards the first participant. Ma'am, apne baare mein batayega?
3: Ji, assalamu alaikum. I am Dr. Asma Zafar, working as an associate professor at the Department of Biotechnology, UCP.
4: Assalamu alaikum. I am Amara Masood and I am working in UCP from 2017 and I have done my MPhil from National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering and my PhD will be completed soon.
5: Assalamu alaikum. My name is Dr. Sada Fameen and I'm working as an assistant professor at Department of Biotechnology.
2: Ji mohtaram samain, taarufi kalimat ke baad hum badhte hain baqaida program ki taraf. Pehla sawal mera Dr. Saiba aap se hai. Aapne department ke bare mein mukhtasaran bataiye.
3: Thank you so much, sir. I am Dr. Asma Zafar, currently working as an associate professor. I have joined the Department of Biotechnology in 2017 as an assistant professor. If we talk about the history of biotechnology department, this department was established in 2015 under the head of Faculty of Life Sciences. Then this faculty is converted into Faculty of Science and Technology in 2022. If we talk about the programs which we are going to run under the head of Department of Biotechnology, currently 4 programs are running: BS Biotechnology, MS Biotechnology, PhD Biotechnology, and recently we have started another MS program, which is MS Forensic Science.
2: Very nice. And now I ask Ms. Amara, aap kis department ke baare mein bataiye?
4: जी, थैंक यू डॉक्टर करार। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत एडमिशन है और हमारे बीएस की क्लासेस 3 सेक्शंस हमारे 150 प्लस तकरीबन स्टूडेंट्स हो जाते हैं। हमारे एमएस बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी की भी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, और अब हमने रिसेंटली एमएस फोरेंसिक शुरू किया है और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। एडमिशन के लिहाज से एमएस फोरेंसिक साइंसेज का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी और एमएस बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा फोरेंसिक साइंसेज भी अब बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है।
2: जी नवाजिश मिस हमारा, अब मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आप बताइए अपने डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन।
5: बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम क्लोजली कनेक्ट है विद इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, और यही रीज़न है कि इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे गेट प्लेसमेंट एट इंडस्ट्रीज।
2: जी बहुत खूब। डॉक्टर आसमा, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि आप अपनी 7 जो कॉलीग्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसरन बताइए हमें।
3: थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट द वर्किंग एनवायरमेंट। सो आई वुड लाइक टू से दैट एट द यूसीपी आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, और जो सबसे अच्छी बात मुझे यूसीपी की अभी तक लगी है, जो जिसकी वजह से मैंने इतना लॉन्ग स्टे किया है, वो यही है कि यहाँ पे हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है वो यूसीपी में अपने कोलीग्स के साथ गुजरता है, घर से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं। तो हमारा बिल्कुल जो एक एनवायरमेंट है वो फैकल्टी लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, तो इसमें कोई, और हमारा जो एक वर्किंग एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट है, हमारे जो वर्किंग सिटिंग प्लेसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसके अंदर कोई इस तरह का ड्रॉबैक नहीं है, और शायद यही वजह है कि इतना लॉन्ग स्टे जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स यूसीपी के अंदर उनका इतना ज़्यादा ये लॉन्ग स्टे होता है।
2: जी यही सवाल मेरा मिस हमारा आपसे है, फैकल्टी से इंटरेक्शन के बारे में बताइएगा।
4: जी सर, अच्छा हम लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 9 PhD होल्डर्स हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा हमारे 2-3 फैकल्टी मेंबर्स पोस्ट डॉक पोजीशंस पे मेरी क्यूरी स्कॉलरशिप और बहुत अच्छे दाद स्कॉलरशिप वगैरह पर अब्रॉड गए हुए हैं। कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं 1-2 जो अमेरिका में जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को टीच भी करते हैं और हमें रिसर्च में भी असिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लेक्चरर्स हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी उनकी रिसर्च प्रोफाइल है और रिसर्च पब्लिकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में, कमर्शियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका बहुत अच्छा रोल है। तो फैकल्टी माशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है और टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है।
2: बहुत खूब मैम, अब मैं डॉक्टर सदफ से पूछूंगा क्या उनकी भी यही राय है अपनी फैकल्टी के बारे में या उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है।
5: सर मेरी अपनी फैकल्टी के बारे में सेम राय है और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ अ डाइवर्स फील्ड। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सम बिलोंग्स टू हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, सम बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तो जब हम इस डाइवर्स बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इससे स्टूडेंट को जो है वो बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है और उन्हें फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प आउट होती है कि वो हर टीचर से जब पढ़ते हैं जिनकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है उन्हीं एरिया में, तो ये स्टूडेंट को एक नई न्यू इंसाइट देती है।
2: बहुत अच्छा मैम, बड़े वाज़े तरीके से आपने बताया। मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अब वक्फा हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा यूसीपी की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, हम दोबारा प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं जिसका नाम है फैकल्टी आवर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं तीन हमारी खवातीन पढ़ाने वाली, डॉक्टर साहिबा और मिस अमारा और डॉक्टर सदफ। तो मैं डॉक्टर असमा से दोबारा सवाल करूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि बच्चों का एक्सपोजर के लिए क्या आप कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजिया और इस तरह की चीज़ें करवाते रहते हैं बच्चों को?
2: जी सर, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी आपने पहले सवाल किया है कि हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, तो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर ये भी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास वर्क, तो उसमें स्टार्ट ये चीज़ एक ज़रूर रखते हैं कि कोई ना कोई एक्सपोजर का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स का, वो ज़रूर हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कि कोर्स कौन सा है। अगर वो कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई सेमिनार जो है वो कंडक्ट करवाया जा सके, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जा सके, या कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्टडी टूर के लिए आउट ऑफ द कैंपस जो है वो लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ थेरी दे दी जाए और अगर उनको रियल वर्ल्ड के साथ उस थेरी को लिंक ना किया जाए, तो आई थिंक कि वो उस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ऑप्ट नहीं कर पाते। तो हमारी ये एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस है। मेरी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसको ऑप्ट करते हैं। और इसमें जो कॉन्टीन्यूसली जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आइदर इट इज़ अ स्टडी टूर, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मिस अमारा, जैसे कि डॉक्टर असमा ने बताया, इसका मतलब है आप अपने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ आगाह करते हैं और उनको उनके बारे में बताते हैं। मज़ीद रोशनी डालिएगा।
3: अच्छा सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि यूसीपी का जो ये बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये ना सिर्फ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडिंग डिपार्टमेंट है, बल्कि रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से भी हमारा डिपार्टमेंट लीड पर है। और तो उसमें सर ये है कि हम रूटीन में अपने फैकल्टी मेम्बर से भी और गेस्ट स्पीकर से भी हम उनको कहते हैं कि आपने जो इतने अच्छे स्किल्स सीखे हैं वो प्लीज़ हमें सेमिनार्स दें, हमें बताएं। इसके अलावा सर, अभी हाल ही में हमने एक अलमनाए सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, दाद स्कॉलरशिप पे बाहर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनको खसूसी बुलाते हैं और अपने जो अब बीएस के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको गाइड करें ताकि ये कि ये भी बाहर जाकर मजीद कर सकें,
1: मोटिवेट भी।
3: बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इसके अलावा सर, हम इंटर्नशिप पे सारे बहुत अच्छी अच्छी सेक्टर्स में बच्चों को प्लेस करवाते हैं। हम सर अवेयरनेस कम्पेन्स रन करते हैं, डीएनए डे सेलिब्रेट करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका बायोइनफॉर्मेटिक्स को लेके बहुत अच्छा मॉडल कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन करवाते हैं, जो कि हम पिछले 7 ईयर्स से रूटीन में बड़ा करवा रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर हम बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा सर, इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी हम प्लेसमेंट्स करवाते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बुलाते हैं कि फाइनल सेमेस्टर में आकर हमारे बच्चों को प्लेस करें, जैसे जॉब फेयर के लिए। जैसे सर, एक वो बड़ी मूवी में तारे ज़मीन पर वो मूवी है जिसमें उन्होंने ये किया है, तो हमने बिल्कुल उसी से मोटिवेशन ली और हमारे इस साल जो बच्चे हैं कोई 10 बच्चे तकरीबन उन्होंने इंडस्ट्रीज में प्लेस करवाए हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं फिर दोबारा आपका हवाला दूंगा, जाहिर है आपकी पीएचडी चाइना से है। हमें ये बताइएगा कि क्या आपने वहाँ जो लोगों से रवाबत कायम किए तालीमी और रिसर्च के बारे में, क्या आपने उसका समर जो है वो यूसीपी के बच्चों तक पहुंचाया?
4: जी सर, इसमें यह है कि क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र हैं, ये जो मेरे कुलीग्स हैं, उनमें से बहुत से कुलीग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जैसे एमआईटी के अंदर है, स्टैनफोर्ड में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की एक कॉन्फ्रेंस जो जूम मीटिंग है वो उनके साथ अरेंज करूँ और उन्हीं का कोई एक पेपर बच्चों को रीड करने के लिए देती हूँ और आई आस्क देम कि वो उनसे ही क्वेश्चन पूछें कि उन्होंने ये काम कैसे किया और उसमें उन्होंने किस तरह की हर्डल फेस की है। तो ये है कि हम इस तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो अपना यूज़ करते हैं यूसीपी में।
1: माशाल्लाह, ये ही वजह है ना कि बायोटेक्नोलॉजी यू नो इज़ प्रोग्रेसिंग विद एवरी पासिंग डे। सो हैट्स ऑफ टू यू, योर पर्सनल एफर्ट्स, योर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, योर कंसर्टेड एफर्ट्स, आई विल पुट इट लाइक दैट। तो आपसे डॉक्टर असमा दोबारा एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि व्हाई बायोटेक्नोलॉजी ऑफ यूसीपी व्हेन देयर आर सो मेनी अदर class institutions existing in Lahore, why UCP and why biotechnology? Why?
2: जी सर, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूसीपी एज वेल एज एफओएसटी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं इसमें देखती हूँ कि हमारी जो रिसर्च हैं, रिसर्च लैब्स हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि यूसीपी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि इफ़ दे वांट टू परसू देयर स्टडीज़ फॉर एमएस एंड पीएचडी, तो उनको यूसीपी से ही करना चाहिए. क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे पास जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस वक्त जो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा एडवांस हैं. हमारे पास जो फैकल्टी है उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो हमारा यूसीपी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा एडवांटेजियस है एज कम्पेयर टू अदर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स.
1: हमारा द सेम क्वेश्चन, व्हाई यूसीपी एंड व्हाई बायोटेक्नोलॉजी एट एफओएसटी, एनी सॉलिड और कोजेंट रीज़न फॉर दैट?
3: अच्छा सर, इसमें वैसे मेरा मानना ये है कि वो अगर आप कभी ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ कहीं बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा बैठे हो ना, तो हम जैसे लोग कहीं छुप से जाते हैं. मुझे लगता है कि यूसीपी में रहते हुए मैं बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंस, यानी मैं बड़ा अच्छा एडिशन कुछ कर सकती हूँ स्टूडेंट्स की करेक्टर बिल्डिंग में. और ये, और सर मुझे यहाँ प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है. मुझे 8 साल यूसीपी में हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी का इंफीरियर स्ट्रक्चर और हमारी बायोटेक की लैब्स बेहतरीन है. हमारे एचओडी साहब, हमारे प्रोरेक्टर साहब बहुत अच्छे से, हमारी डीन साहिबा हमें फैसिलिटेट करती हैं. और सर स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए सर हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ फंडिंग के हालात भी हमारे सामने हैं. इससे मैं अगर मुकाबला करूँ यूसीपी का, तो मुझे लगता है कि बनिस्बत हमारी लैब्स में हमारे बीएस के बच्चे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लैब काम कर रहे हैं और हम उनको रिसर्च पब्लिकेशंस, हमारा बीएस का बच्चा रिसर्च पब्लिकेशन निकाल रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि ये एक फैकल्टी लेवल पे भी और डिपार्टमेंट लेवल पे भी ये हमारी एक बड़ी प्रोग्रेस और बड़ी बात है कि हम ये कर रहे हैं.
1: जैसे कि दोनों मैम्स ने बताया, पहले डॉक्टर आसमा ने, फिर मिस हमारा ने, कि मुझे याद आ गया ताहिरा सैयद का एक गाना कि हम सब हो तो सामने आए. तो वाकई बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ लगती है. मुझे यही बात मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा. डॉक्टर साहिबा, व्हाई यूसीपी? What is so special about your department?
4: सर, इसका आंसर मैं आपको टू पार्ट्स में दूंगी. एक तो लाइक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो बायोटेक जो है वो एक इस तरह की फील्ड है जिसमें एट द एंड बच्चों के पास कुछ ना कोई बायोटेक प्रोडक्ट होता है. हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ क्लोजली कलेबरेट कर रहा है. तो उसमें तखलीक का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो बायोटेक के बच्चों को उनकी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट से लेकर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक जो है वो उनको गाइड करता है प्रॉपरली. और उनको लाइक जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हम उनको देते हैं. दूसरा ये कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने यहाँ से ग्रेजुएट किया और उसके बाद लाइक हम आपको गाइड नहीं करते हैं. हाँ, इवन अगर स्टूडेंट्स को जो है वो फर्दर गाइडेंस चाहिए, वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. तो सर ये कुछ अच्छी बातें हैं जो यूसीपी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं.
1: बिल्कुल. और जो तलबा और तालिबात को मजबूर करती हैं कि वो आएं और यहाँ दाखिला लें. चलें जी, हम आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं मैम. डॉक्टर आसमा से दोबारा शुरू करते हैं कि ये बताइएगा कि आपके जो बच्चे यहाँ से फारगुल तहसील होके जाते हैं, आप उनको, तीनों मैम से पूछूंगा बारी बारी, आप उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था शुरू में यूसीपी में, मैंने सादी का एक शेर इस्तेमाल किया था फारसी का, कि शादी का खेर है जिसका तर्जमा उर्दू में ये है कि खुशबू वो है जो अपना पता खुद बताए, ना कि बेचने वाले अत्तार को बताना पड़े मेरे पास फलां खुशबू है. मैंने तो ये कहा था कि मैं अपने बच्चों को वो खुशबू यूसीपी की उनमें इनकलकेट करता हूँ. आपकी क्या राय है, आप ऐसी क्या चीज़ उनमें उजागर करते हैं ताकि जहाँ भी जाएँ वो यूसीपी का नाम रोशन करें?
2: जी सर, जैसे पहले भी मिस हमारा ने बताया है कि हम लोग क्लासरूम में तो एक जो कोर्स वर्क है वो तो करवाते ही हैं, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको इन्हांस करें. और ये एक बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स का हमारे साथ इंटरेक्शन. अगर हम बीएस की बात करते हैं तो 4 साल का एक पीरियड होता है. तो आई थिंक कि अगर वो टीचर्स को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, अगर हम टीचर्स अपने आप को इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो मॉरल वैल्यूज़ हमें उनको मुँह से ना बतानी पड़े
1: रोल
2: मॉडल के तौर पर, तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर जाते हुए उनके अंदर वो चीज़ें मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि वो चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी होती हैं और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी उसको कंटिन्यू करते हैं.
1: जी मिस सवारा, ये सवाल आपसे.
3: सर मेरा वैसे इसमें ये मानना है कि एक वालिदैन और एक दूसरा जो उस्ताद है, ये दो लोग हैं जो बच्चों को अपने से आगे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं.
1: रूहानी वालिदैन है,
3: रूहानी वालिदैन है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो सर मैं तो जो बच्चों को मैसेज भी देती हूँ वो ये है कि मेहनत करें सर, शॉर्टकट कोई भी नहीं है. हर चीज़ के लिए आपने मेहनत करनी ही है. जितनी मेहनत आप करेंगे वो चीज़, और हम बच्चों को इस चीज़ का आदि भी बनाते हैं कि आप प्लीज़ किसी शॉर्टकट और इन चीज़ों की तरफ मत देखें. बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ आप वो करें तो सर ज़िंदगी तो है ही बड़ी खूबसूरत, और इसी चीज़ को आगे ले कर चलें तो सारे रस्ते आपके हैं. सर अल्लाह ताला हर एक के लिए दर तो ज़रूर खोलते हैं, वो रहमान है सर.
1: डॉक्टर सदफ, आखिर में यही सवाल आपसे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा.
4: सर मैं अपने स्टूडेंट को जो बात बताती हूँ ये कि दे हैव द पोटेंशियल, दे जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट. पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी अनसर्टेंटी होती है कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब मिलती है नहीं मिलती है. तो उसमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि दे हैव द पोटेंशियल, वो कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ उन्होंने जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है.
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब ने तो रूमी के कॉल को अपने अल्फाज में बयान कर दिया कि असल में ज़िंदगी जो है ना दुनिया वो आपके अंदर आबाद है. आपने अंदर नज़र दौड़ानी है, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, फिर अल्लाह ताला आपको पर फराहम कर देता है. इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है. मैं अपनी तीनों मेहमानान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि डॉक्टर असमा आपका, मिस हमारा आपका, डॉक्टर सदफ हमीद आपका, आप तशरीफ लाएं और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया. आइंदा भी हम इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे. ख्याल रखिएगा, यूसीपी की दुनिया से हम मुखातिब हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो.
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: Let's get stress-free. Tune into FM 92.6, UCPK Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।